का बहराइच लखनऊ दिल्ली लगायत का अस्पताल में उपचार का लागि जान बाध्य छन्। सुशील कोरेला प्रखर कैंसर अस्पताल लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम का लागि सरकारी कैंसर उपचार सेवा दिने प्रमुख केन्द्र हो। अस्पताल प्रशासन का अनुसार मेसिन मरमत करने प्राविधिक अस्पताल में छैनन्। मेसिन आपूर्ति

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे, चलिए ना। अरे

0: Oh, he'll attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
1: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
0: क्या नाम बता?
1: Mehr Garewal.